हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 414 90 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: barrel.
1: Yeah. भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू।

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नॉट एवरी रेस्टोरेंट बिकम्स एन एक्सपीरियंस, बट सोल फ्लेवरस्केप ऑफ इंडिया इज अ जर्नी थ्रू टेस्ट, ट्रेडिशन एंड अनफॉरगेटेबल फ्लेवर्स।
2: फ्रॉम क्रिस्पी दिल्ली स्टाइल आलू टिक्की चाट, फ्लेवरफुल समोसा चाट, टू द सिग्नेचर सोल दाल बुखारा,
1: एंजॉय फ्रेश सिजलिंग वेज एंड नॉन वेज स्टार्टर्स पेयर्ड परफेक्टली विद ओवन फ्रेश चूर चूर नान मेड विद लव एंड फ्रेश इंग्रेडिएंट्स।
2: प्लानिंग योर बर्थडे, वेडिंग, ग्रेजुएशन पार्टी, कॉर्पोरेट गैदरिंग और फैमिली सेलिब्रेशन?
1: Ask about customized catering menus at reasonable prices, crafted specially for your event with authentic Indian flavors everyone will love.
2: And don't forget the amazing custom cakes, beautifully designed and perfect for every celebration.
1: Whether it's dinner with family, chai with friends, or your next big event, Soul Flavor Escape of India. Escape into flavors, experience the soul of India. Soul, where every dish is poetry. Visit us today at 301 Glenwood Avenue, 190, Raleigh. Call 919-900-7231 to reserve a table, order online or book catering services.
3: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्यूल्स नॉर्थ कैरोलिना,
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning, morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But fikir not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा. पका देसी, पका लोकल.
1: यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे.

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

अब सुनिए रेडियो नारा पर तीन गाने टकाटक, सुनते रहिए रेडियो नारा 99.9 FM HD4 101.9 FM 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 99.9 एफएम HD4 101.9 एफएम 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: मैं पानी पानी
1: इमेज खराब काम गलत न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहाँ से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल। रेडियो नहरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: मैंने

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? हा? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड मैं हूं सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. जैसे ही आज सोशल मीडिया मैंने ओपन किया, मुझे सोशल मीडिया पर एक चैट जीपीटी का ट्रेंड नजर आया. एंड ट्रेंड ऐसा था कि आप अगर 80s में होते, 80s में आपका लुक कैसे दिखता, ये ट्रेंड था. और वाकई में मैं बताऊँ, इतना कमाल का ये ट्रेंड छा रहा है. मैंने भी मेरी जो फोटोज़ है वो 80s में मैं कैसे दिखता था ऐसा डाल के देखा, तो ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आ गया. डेनिम जैकेट्स एंड अंदर टी शर्ट्स, उसके बाद क्या ही मैं बताऊँ, जो लुक, जो फैशन, जिस तरह का म्यूज़िक 80s में था, ये ट्रेंड ने साबित कर दिया कि नथिंग इज़ लाइक दैट 80s. 90s का किड होने के नाते 80s में का फैशन जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और मज़ा ही आ गया. एंजॉय करते हैं अगला ये गाना.

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड 80s का ट्रेंड जो चैट जीपीटी ने सेट कर दिया है, मजबूर कर दिया है यार 80s के ऊपर बात करने के लिए। तो 80s का दौर था डिस्को कल्चर। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म डिस्को डांसर ने देश में डिस्को डांस और कल्चर को घर घर तक पहुंचाया था। फिर वो जैकेट्स रहे, उनके डांस की स्टेप रहे, उनके बोलने का अंदाज रहे। 80s मतलब डिस्को, ऐसा कह सकते हैं। एंड संगीतकार बप्पी लहिरी भारी सोने के आभूषण और चमकीले कपड़े पहनकर अपनी एक अलग ही पहचान बना चुके थे। मतलब 80s के जो डेज थे वो गोल्डन डेज थे, ऐसा कहने में हर्ज नहीं। जिस तरह से बॉलीवुड 80s के टाइम में उभर रहा था, ओ माय गॉड, ये तो अलग लेवल पे ही था। एंजॉय करते अगला एक गाना एंड क्या करूँ यार, ऐसा लग रहा है कि 80s के लाइक टाइम मशीन से जाके बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा आज मुझे लग रहा है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायर अपन निर्माता नाइट्स, बातें चल रही है आज 80s की। यार 80s की बातें मतलब भड़कीले कपड़े। इस दौर में चौड़े कॉलर वाली शर्ट, चमकीली जैकेट और प्लेयर्ड पैंट मतलब घंटे की आकार की पैंट का फैशन जो था वो बहुत था। अभिनेत्रियां बड़े पफ वाले बाल और घुंघराले बालों की हेयर स्टाइल रखती थी, जबकि अभिनेता लंबी और घनी मूछों में नजर आते थे। ये जो फैशन था ना यार, अप टू द मार्क, ये फैशन अलग लेवल का था। और ऐसा फैशन ना 90s में देखा गया, और अब की तो फैशन की बात नहीं। अब कपड़े पहनो तो एक जैसा ही लगता है, लगता ही नहीं हम कुछ फैशन कर रहे हैं। फैशन तो उस जमाने में 80s में हुआ करती थी। एक्चुअल में ऐसा लगता था कि कुछ अच्छे से ड्रेसिंग करा है, मतलब डेनिम रहे, शूज रहे, वॉचेस रहे, और उसके बाद हेयर स्टाइल का तो जवाब ही नहीं था।

है रेडियो नारा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड उस समय कुछ कुछ चीजों का अभाव था, जैसे वैनिटी वैन का अभाव। उस समय सितारों के लिए आज जैसी आधुनिक वैनिटी वैन नहीं होती थी। शूटिंग के दौरान पेड़ों की छांव या खुली गाड़ियों में वो आराम करते थे, मतलब पूरी तरह से नेचर से जुड़े हुए रहते थे, इसलिए नेचर की तरह नेचुरल एक्टिंग लोग करते थे। ओवर एक्टिंग का दौर उस टाइम में ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं था। मतलब कुछ सुविधाएं ना होते हुए भी क्या कमाल का दौर था। और उसके बाद विदेश की बजाय ऊटी, कश्मीर और मुंबई के स्टूडियो, जैसे महबूब स्टूडियो, यहाँ जो प्लेसेस थी, ये कुछ मेन प्लेसेस थी, यहाँ पे शूटिंग हुआ करती थी। एंड सच में वो टाइम का ऊटी वगैरह भी ना फॉरेन जैसे लगता था।